बिजी AI टीवी मा हेर्नुस फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेंट AI पिक्चर एंड साउंड संग अप टू 30% कैशबैक र 0% EMI नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू प्लस 4 इयर्स फुल वारंटी अब घरमै स्टेडियम एक्सपीरियंस LG लाइफ्स गुड

0: कागज के में छी वा
1: अ झिलकाई
0: के पर्सनल नम्बर ब्लक लै वदि
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनियो टेलिकमर बे अफिसर याई र ब्लक लै र खलखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी
0: अ
1: चर्चै तली ललपर्दि
0: चमलल पति न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफै न बैंक दे बिनी जानकारी पिन परिम दे आफै न बैंक खातै न जानकारी अरु न योरी थोनिप दक्या सचेत तल परिम
1: सतर्क तन ठगी तब दक्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैंक क्याले जनहितरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई

World Ingo Festivity Offer. अब पाउन होस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेशनल नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेटअप बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में शर्तहरू लागू होने छिटो बनेगा वर्ल्ड इंगो।

0: तिमी त मेरो परान हो नि मैया, तिमी बिना जिन्दगी कहाँ चल्छ र?
1: चेने भए नि हामी एक हुन सक्दैनौ के रे?
0: ल किन के रे सेक्छ र?